0: अपने सेवक किया पत रख
1: ताकि गदमित कोए न लाखे
0: रखे सेवक को ना पहुँचे
1: रखे सेवक ऊंचे ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया
0: की रीमे कल रख
1: पसंद करे लश्कर कोट लाखे।

0: पुरख भगवान
1: सर विकुंठ मुक्त मोख पाए अनकराज भोग वडियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भो पूजन का प्रसंगीत
0: रसना जति हर हर नीत
1: परिसुवर्णी शोभा त

0: ईश
1: जय छल छिदर लगत को कीश
0: जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे भूख कवन तृप्त आवे
0: कंद करावन करने हार
1: नानक करते का नाई संभार
0: अपनी शोभा आपन संग मनाई
1: आप कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: सर्व कला आपे परवीन
1: तै वेद कतेब कहां को चीन
0: अपने आप आप उधारे
1: तो सगन सगन कहां विचारे
0: अपनो जापन अपने रा
1: कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विस्मर विस्मर विस्माद
1: अपनी गत जानो आप
0: जय छल छेद भेद समाया
1: किसे व्यापत माया
0: आप उसको आपे आदेश
1: तै गुण का नाही प्रवेश
0: एक एक भगवंता
1: कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपने आप पतियारा
1: कौन कहे कौन सुने हारा
0: वो बेअंत उचते उचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: आप रचो प्रपंच कार
1: तै गुण मैं की नो विस्तार
0: आपुन तै पई कहावत
1: ओ नरक ओ स्वर्ग विषावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: होमे मोह परम पै पार
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओ बख्यान
0: आपन खेल आप कर देखे
1: खेल संकोचे तो ना।

0: हृदय सब तरम
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता दिस की ये रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: रावण हार प्रभु जाने
1: अंतर वसे बार भी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: सगली उत्पात
1: जिस पावे ता करे विस्तार
0: जिस पावे ता एक ओंकार
1: अंक कला लखी ना जाए
0: जिस पावे जिस लय मिलाए।

0: जाने खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की नी माया
0: सबके मद लिप्त हो रहे
1: जो कुछ कहना सो आपे।

0: भगत के मन विश्राम।
1: कोट प्रात साध संग मिटे
0: संग के पाते जंबे छुटे
1: जाके मस्त कर्म प्रपाए
0: साध सन्नान के आए
1: जिस मन बसे सुने लाए प्रिय।

कोई अवरना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है,

ज्ञान उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझेओ हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत

शरंते हारी आप हद ले हो उबारी सर्ब ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।

करो व्रत पारा तुम साहिब मैं किं कर थारा दा जान दाय हाथ उबारो हमरे सा बैरियन संगारो प्रथम दरो भगवत को त्याना बाहर करो कविता बिद नाना किशन जथा मत चरित्र उचारो चू गोए कबले हो सुधारो कबे बाच दोहरा जो निज प्रम सो कहा सो कहे हाऊं जग माहे जो तेह प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन द्वि एक है

बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चलाए तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पा महेंगे भगवंत दोहरा, काल पुरख की देह मो, कोट कमिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा कते, राव सस क्रूर जलेश दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौप।

महाराज जी कहते जिहड़ियां चीजां नूं मिठियां कर कर खांदा ना, जिहड़े पदार्थ विशे विकार इहनूं मिठे लगदे आ, प्यारे लगदे आ, ओही इहनूं रोगी बणाउंदे आ, ओही इहनूं दुखदाई हुंदे आ, दुख दिंदे आ। कदे इस जन्म च, कदे पिछले जन्म च, कदे अगले जन्म च, भावी जन्म च, लेकिन दुख जरूर दिंदे आ। दुखदाई मोह माए, महाराज जी कहिंदे पदार्थां दी तां गल छड्डो, आ जिहड़ा माया दा मोह है, पदार्थां दा जगत दा मोह भी है ना जिहड़ा, ओह भी दुखदाई है। ओह भी एक ना एक दिन बंदे नू दुख दिंदा है। महाराज जी कहिंदे फिर कोई ऐसी वस्तु भी है जिहड़ी मिठा रस दिंदी होवे, जिहदे स्वाद चों दुख ना पैदा हुंदा होवे, सोखे सुख प्रगट होवे। हुण दुनिया दे जिन्ने रस ने, सब रसां दे विच्चों दुख प्रगट हुंदा है। क्रोध चों भी, काम चों भी, हंकार चों भी, मोह चों भी, हर एक पदार्थ चो दुख पैदा हुंदा है। पर महाराज जी कहिंदे

महापुरुषां नूं जिन्हां ने कमाईयां कीतियां ने एवें ना जाणीए। जिथे मर्जी महाराज जी का नाम लै के झंडा गड्ड के बह जाइए, झंडा गड्डण की भी लोड़ नहीं। महाराज जी का नाम लै के बह जाइए कि इत्थे महाराज जी का स्थान बनाउणा है, उत्थे ही भाग लग जांदे है, उत्थे ही पदार्थ नहीं तुड़दे। सानू सारिआं नूं ही अपने अपने घर चलाउणे औखे लगदे है, पर कदे महाराज जी दे घर सुनिया भी कदे कमी आई होवे? कदे नहीं आंदी। क्यों नहीं आंदी? क्योंकि महाराज दा घर है। आखो सतनाम। इत्थे महाराज जी दी जारा कला वरतदी है, प्रतख कला वरतदी है। लुट्टण वाले लुट्टी भी जांदे है, फिर भी कोई कमी नहीं आंदी किसी तरह की। इत्थे नहीं आउणी। जिथे इथों लुट मचाई जाती है उत्थे बेशक कख ना रहे। इत्थे कदे कमी नहीं आनी कदे। ये सच्चे पातशाह का घर है, और जेडे सिख सच्चे पातशाह नू हाजर नाजर जानते है वो कदे भी महाराज जी दे भय तो बाहर नहीं जाते। हमेशा सतगुरु दे भय च रह के मिलियां सेवावां निभाउंदे है। सो महाराज साहब जी इत्थे बचन कर रहे हैं, गुरमती घट चानना। महाराज जी अपनी सिक्ख्या दे के बंदे दे अंदर चानना कर देंदे है, अंदर प्रकाश कर देंदे है। किदां? अनेकां तरीकियां दे नाल। आ तां चार पंज गल्लां कीतियां ना आपां, दुनियावी गल्लां कीतियां ने। कई अभ्यासी जड़े है ओहो जदों उन्हां नूं मिलीदा वो दसदे आ वी एक बार नाम जपदिआं जपदिआं इक्को ही थां अवस्था रुक गई।

निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा। मन मह चितवो चितवनी, उद्यम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जय कर कीर्ता खिये करते का हो विचारो। तित कर गाओ सोहेला, सिवरे हो सृजन हारो। तुम गाओ मेरे निर्भो का सोहेला, हवारी जीत सोहेले, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पाहो तेल। देहो सज्जन सिसड़िया, ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल। घर घर हे पहुंचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिय, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला। छह कर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एक होए सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राग उड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पैरा, तिति वारी माहो होवा। सूरज को रुतनेक, नानक करते के किते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंदी पक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पौन चौरो करे, सगल बंदराए फुलंत ज्योति।

आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा।

हर हर गुण गाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत सर दर दुख लथा, नाम की महिमा संत दवसा, संत प्रताप दुर्त सब नसा, संत का संगबट भागी पाइय, संत की सेवा नाम ते आइय, नाम तुल कश अवर न होए, नान गुरमुख नाम पावे जन कोए स्वरूप, बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्वट डोल पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपति, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे

पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कान भी खोट गवावे, एक बिना देहे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन रागा ब्रह मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा।

बस पंचा सासंग अमृत रस पुंचा सासंग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग ना कतुहुता वै सासंग अस्तित मन भावे साधक संग माया दे बिन सासंग नानक प्रभु सुप्रसन्न सासंग दुश्मन समेत साधु कह संग महाप्रीत सासंग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भिंगा बैर साधक संग ना ही गो मंदा सासंग जाने परमानंदा।

सुख पावे। सा संग बस अगोचर लय साधु कै संग आचारु सह साधक संग बसे तानुचय साधु कै संग महल पहुचय साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार।

निंदक सदा विजोग संघ निंदा दोख मैं दोख नान संभावित उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का रही मेहत संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी म अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुखते डरे संत के दुखी को ना ही ठाव नान संत भावित लय मिलाए संत का दुखी अज बीते टूटा है संत का दुखी कितने काज ना पहुंचा संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ की चनाहे आप नबी जापे ही खाहे संत के दुखी गबर न रखन हार नानक संत भावित लय उभार संत का दुखी एवं बिललाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भुखा नहीं राजे जो पावक इंद्र ने तरपै संत का दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुखी सद मिथ्या गहत किरत निंदका तुरही पया नानक जोत सुभावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ू बह जाए संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजना आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना पृष्ठा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कृतना मेटा कोये नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सतगुरु दिन रात से ते आवो सास गिरास सब

साधना चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानके तनसार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अब्र पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण कर्ण सो प्रभ सम्राट दृढ़ कर गहो नाम अरवत्थ एतन संचो हो भगवान संजना का निर्मल मंद एक आस राखो मनवाए सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को अनुत बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुगुभावी रोग ना जाए रोग मिटे हर वक्त लाए सर्व निधान वेर नाम निधान जप नानक दरगे परमान मन प्रबुद्धो हर के नाए दय दस्तावत आव अठाए तागो बिघन न लागे कोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पावन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म बरगास तितकर जाय बसे अविनाशी कहु नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा

संग परे सरनाम सबद याग अंतर मृगा संत निवलाग पटभागी जब रब जब्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लाई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुख जन होया जन्म मरण दुख भ्रम गया इशपुन्नी सरदा सब पूरी रब रया सत्संग है झूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सोग बिसरै जय काल ना भानै सोग बिसरै जय की आ जानै सोग बिसरै जन सब कुछ दिया सोग बिसरै जय जीवन जिया सोग बिसरै जय अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सोग बिसरै जय बिगते काटै जन्म जन्म का टूटा गंड है गुरपुरै तत एहा बुझाया प्रभना नानक जन ध्याया साजन संत करु ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभरै नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भक्ति तनु सीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा विनाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेग दर्शक होए मन बिकसै साध चरण तोए भगत जना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर भया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ अक्षां दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत परत।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सभावित श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न ही किश होया अपन आपन सू सब जगत परोए जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सभता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस तज अबर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान व्यंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर्ण रहे दयाल सब ऊपर होत कृपार अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे हो ब्याप परत पाले जियन बापा जो जो रचे सो तिसे त्याद जिस भावित लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लाग हर एक राय तिसकी आस न मिर्थी जाए सेवा को सेवा बने आई हुकम भूज परम बद भाई इसते ऊपर नहीं बीचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निरवैर अंदर पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत करो बीचार दुर्लभ देखा गर्व उदार अमृत भजन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वभाव आठ पैर प्रभ एको नेरा मिटे अज्ञान मन से अंधेरा सुन देश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पल दो लियो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे तिसाज परिख्या मन तन नाम जपो लेवलाए दुख दर्द मनते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर्ग निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निर्भव जपे सगल पाव मिटे प्रभु कृपाते प्राणी छुटे जिस पर राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन हो बसुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिजन गो कोई ना पहुँचन हार सिर पर ठाडा गुर सूरा नानक तागे कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आपद काल अमर भये अमरा बद पाया सा संग नान घर ते आया सुरू।

के दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरो हर धन के भर लिहो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितबो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण किरपाल सिमर सिमर ना बारंगवार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लग हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उधरे तन के साथे सरन जोग सुसरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की सतगुरु संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब

न सुझई जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत तबले आकाश।

दुख पाप का नाश। सुनयाय सर बरमाइंद, सुनयाय मुख साला हनुमंद, सुनयाय जोग जुगत तन भेद, सुनयाय सात सिमरत वेद।

सर सर का स्नान सुनया पर पर पाभिमान सुनया लागे सह ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुना के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावे राहो सुनया हाथ होवे अस गाहो नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गात कही ना जाए जे को कह पिछे पछता।

मन कोय मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल भवन की सुध मन मोह चोटा न खाए मन जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन मार्ग ठाक न पाए मन पास्यों प्रगट जाए मन माग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐ

साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन ले बिलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिब ते पाहे

एक बार जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निंकार परिये हाथ पैर तन देहे पानी धोते तो उतर सोखे।

विचारे सोई सोई सदा सत्य साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिंद रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन्हें उपाई

कथन कर डासार जात पहारा तीज सुनियार अहरन मात वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर मतिन कार नानक नदरी।

namastang dharmang, namastang namang, namastang tamang, namastang adite, namastang apite, namastang abahe, namastang atahe, namastang anile, namastang anate, namastang shede, namastang gade, namastang ganje, namastang panje, namastang dare, namastang apare, namastang soe kahe, namastang ane kahe, namastang pute, namastang ajupe, namastang nirkarme, namastang nirparme, namastang nirdese, namastang nirpese, namastang nirname, namastang nirkame, namastang nirtate, namastang nirkate, namastang nirtute, namastang pute, namastang loke, namastang soke, namastang nirtape, namastang thape, namastang trimane, namastang dane, namastang gahe, namastang bahe, namastang trivarge, namastang sarge, namastang pripoge, namastang sojoge, namastang arange, namastang pange, namastang gamme, namastastarame, namastang jalasare, namastang nirasare, namastang jate, namastang pate, namastang abajbe, namastastajbe, adesang dese, namastang pese, namastang nitame, namastang nirvame, namam sarvakale, namam sarvadayale, namam sarvarupe, namam sarvapupe, namam sarvakhape, namam sarvathape, namo sarvakale, namo sarvapale, namastasta deva, namastang apeva, namastang janame, namastang sarvame, namo sarvagnavane, namo sarvapahune, namo sarvarange, namo sarvapange, namo kalakale, namastasdyale, namo sarvagnavane, namo sarvapahune, namo sarvarange, namo sarvapange, namo kalakale, namastasdyale, namastang abarne, namastang amarne, namastang jararang, namastang kritarang, namo sarvatande, namo sarvande, namastang nirsake, namastang nirbake, namastang rime, namastang krime, namastang anante, namastang mahante, namastastaragme, namastang suhage, namo sarvasokhang, namo sarvapokhang, namo sarvakarta, namo sarvaharta, namo jogjoge, namo pohupoge, namo sarvadyale, namo sarvapale, chachari shantava prasad, arupa hai, anupa hai, aju hai, apu hai, alekh hai, apekh hai, naam hai, akam hai, ateh hai, apeh hai, ajit hai, apihit hai, तिरमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है नील है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगज है अपज है अचूज है अचाज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पजंग प्रयाशंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगावणे नमो सर्वपहुणे अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे संभाति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज रजेश्वरम परम विद्धे नमो शास्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी परमी

सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत व प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्ते अजोन पुरुखे अपार सर्वमान त्रिमान देव पेहवानी उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र बिरहाद ही अवतूत रूप रसाल

जन्म न जाए, न चित्तर न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अदृश्य अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते के अशज देश है के अभेज भेस है के अगांज कर।

नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभा दे गंजे गा दे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागे त्रिपुत स्वरूप है अचेज है अछूत है के नरकंग प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है।

प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभुते प्रमाथं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाण विभुते अनंगी नामे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न तात है न मात है न जात है न पात है निरसाकं श्री कह अमित अमी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है सुमहतल कलाम है के साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांत है के राज करहिंद है करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीब निवाज है हरी फुल सिखान है रासल फिकान है कलंकं प्रणाम।

है अभेस हमें सले अपेख है दिमी नर जमा है अमीकर इमा है करीमर कुमार है के जुरुअत जुमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है

अपन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म वास है, जास के जास है, पजांग प्रयात शांत नमो।

एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सह कूद पावन के गौन कह जात निवारे भारी पजान के पुह पली बिदन आवत सीस न जात बिचारे एते पाए तो कहा पाए पूपत अंत को नाग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोर मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनवंत कुवंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संयम नेम अनेक बसेख भेद पुराण के तेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेख पौन

हो जोग निराली ज्यो तू चलाए है तेव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिब तू चलाए है ते वह चला जिन जिब तू चलाए ते वह चल है जिन मार्ग पाव है कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा ते आव है।

हो लिखाया एक फिरे कनेरे करहे गला गली किने न पाया कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मानव

सो सिख सन्मुख होय, जे कहो गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो विवेकिया जाए, अनेक जूनी पर में आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए, लांग चरनी सतगुरु सब सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए, आव सिख सब आव

सती बाणी। सतगुरु बिना होर कती है बाणी, बाणी ता कती सतगुरु बाजो होर कती बाणी। कह दे कचे सुन दे कचे कती आख बखाणी। हर हर नित करहे रसना कहया कछु न जानी।

ते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

और सबको अपना जिसना ही सोचन कड़ी है किता को अपना पहले के संडिये जा रहना नहीं ऐत जग तक आयत गर भंडी है मंदा किसी ना के पर अखर एहो बजिये मूर्खना।

सगली तिखा बुझंतिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल तन तन साहेब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर रही। गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जीओ, वड्डियां पागां वाले हां महाराज जी दी चरण शो प्राप्त हो रही है। दरगाही बाणी दे कीर्तन, दरगाही बाणी दे जाप और कथा श्रवण करन दा सुभाग सानू हासिल हो रहा है। महाराज जी वचन करदे है, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। एक अखर भी महाराज जी दी बाणी दा हिरदे च बस जाए, उपदेश दा ज्ञान दा हिरदे च बस जाए, कहिंदे बंदा निहाल हो जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक अखर मन च वसन नाल बस गल ए है वी मन च टिक जाए, जिदे अंदर टिक जांदा उदे ते मेहरामत, उदे ते बख्शिश महाराज जी दी जरूर हुंदी है। और असी जिन्नी भी संगत करदे हां महाराज जी दी हजूरी च आउने हां, बस ओह इक किणका ही लैण आउने हां। महाराज जी ने जिहदे बारे कहा है, किनका एक जिस जीव सावै ता कि मैं मांगनी ना आवै। ओ समा किसे दिन बन जाए जिस समय ओ नाम दा किणका, महाराज जी दी बाणी दा किणका साडे अंदर बस जाए। बस जिस दिन बस गया, महाराज जी कहंदे ताकि महिमा गनी ना आवै। उहदी जिहड़ी महिमा है वो फिर कोई कथन करके दस नहीं सकदा। फिर उहदे अंदर इक्को इच्छा लगी रहिंदी है, कांखी एकै दर्स तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। इक वाहिगुरु दे नाम दी, वाहिगुरु दी प्राप्ति दी, वाहिगुरु दे दर्शनां दी इच्छा लगी रहिंदी उहनां नूं। संस्कृत भाषा दा शब्द है कांक्षा, ते कांक्षा तो गुरमुखी दे विच कांखी शब्द बणिआ। बहुत सारे शब्द ऐसे है जिहड़े इक दूजी भाषा दे विच जा के लागे लागे दे शब्द हुंदे आ। बहुत सारे इंग्लिश दे शब्द हैं जिहड़े पंजाबी दे बहुत नेड़े आ, बहुत सारे उर्दू दे ने, फारसी दे ने, जिहड़े पंजाबी दे बहुत नेड़े ने, गुरमुखी दे बहुत नेड़े ने, ते बहुत सारे अपभ्रंश हुंदे आ। अपभ्रंश उह शब्द हुंदे आ जिहड़े किसी शब्द तो बिगड़ के शब्द बने होंगे, जिमें
इंग्लिश का शब्द है टाइम, ते पंजाब दे विच जो किसी ने किसी नूं पुछना होए टाइम किन्ना हो गया, ये जिहड़ा टाइम शब्द है इंग्लिश का अपभ्रंश है, पंजाबी का कोई शब्द नहीं है, पंजाबी च समा है। इदां बहुत सारे शब्द जिहड़े पंजाबियां दे अद्धे नाम अपभ्रंश ने, अपभ्रंश मतलब कि नाम तो बिगाड़ के अगे जिहड़ा नाम रखा जांदा है। किन्ने नाम ने ऐसे जिहड़े नाम नूं जिहड़ा बंदे दा असली नाम उन्हूं त्रोड़ मरोड़ जे कि एक छोटा नाम रख लिया जांदा, बंदे दा मेन नाल मिलदा जुलदा जा भी हुंदा, इनू सौखी भाषा च अपभ्रंश कह दें। और बहुत सारे शब्द है जिहड़े एक दूसरी भाषा दे विच गमन करते मिलते जुलते होंगे। कांक्षा संस्कृत का शब्द है, कांखी गुरमुखी का शब्द है। महाराज जी कहते जिन्हों वाहेगुरु तेरे दर्शनां दी इच्छा हर समय बनी रहिंदी है, कृपा कर मैनू उन्हां दी संगत उन्हां दी सेवा बख्श दे ताकि मेरा भी भला हो जाए उन्हां दी संगत करके। अज दे शब्द अंदर महाराज साहब जी दर्शन दी गल कर रहे आओ, किवें महाराज सानू बेनतियां करनियां अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे अगे जोधनियां करनियां सिखा रहे ने, सिखिए महाराज जी तो, सिखिए बाणी, सिखिए मर्यादा। ये असल मर्यादा है जिहड़ी पावन बाणी च है, सतगुरु दे बचन जिहड़े ने, सतगुरु दे बचना तो वड्डी कोई मर्यादा नहीं हो सकती दुनिया ते, सिख लई खास करके। ते महाराज जी दे बचन सुनन लई कोई राजी नहीं, क्यों? मत ते पड़दा पिया होया है। जिन्नी देर माया च भजे फिरदे आ उन्नी देर ये पड़दा नहीं लेंदा, और जिन्ना समा पड़दा नहीं लेंदा उन्ना समा महाराज की गल नहीं सुनदे। आओ अरदास करिए महाराज जी,

महाराज जी कहते गुरमुखो मन च सुख सी सुखना सी एक मेरी इच्छा सी कहते पूरी हो गई है हो सी वाहेगुरु की प्राप्ति दी अंदर अनहद बाजे बज पे है वाहेगुरु की आमद च महामंगल रहस थिया महामंगल हो गए अंदर वो रहस जेड़ा किसे तो कदे जाने नहीं गया वाहेगुरु की प्राप्ति का मिलाप का उन्हें प्राप्त कर लिया हुण क्यों फिर दयाल साधना बरंगी आ जेड़ा हमेशा नवे रंगा च रंगिया रहन वाला वाहेगुरु है रंगन वाला है कहिंदे दयाल हो गया खुश हो गया सब कुछ बख्श दिता उन्हें बड़ भाग पाया बड़े भागा वाले हाँ कि उहदी प्राप्ति हो गई है गुर मिलाया गुरु साहिब जी ने मिला दिता उन्हूं साध कै सतसंगिया जा साधुआं दी संगत जा सतसंगिया दी संगत ने जा सतगुरु दी कृपा ने मिला दिता है आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई कहिंदे हुण कोई आसा नहीं रही कोई मनसा नहीं रही सारियां ही पूरियां हो गईयां ने क्यों क्योंकि वाहिगुरु ने अपनी बुक्कल खोल के अपनी गलवकड़ी च लै के अपने नाल मिला लिया है बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुरु मिल पाई महाराज जी कहते जो सुख सी सुखी सी वो मैं गुरु नू मिल के पा ली है सुख की सुखी सी कि वाहेगुरु जी सब कुछ लै लो पर अपने दर्शन बख्श दो आखो सतनाम श्री वाहेगुरु गुरु ने कृपा कर दिती है वाहेगुरु दे दर्शन करवा दिते ने इनियां कु बेनतियां प्रवान होईयां भुल्लां दी खिमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर ता पाया सहज सेती राग रतन परवार परिया सब दो तां गाव हो हरी केरा कह नानक आनंद हुआ हे मन मेरिया।

साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंग गल वढ हत्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कूड़े यार कूड़े फेराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सर संख निंदक सर करै भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी

गावहि राजा धर्म दुआरे गावहि चित गुप्त लिख जाणै लिख लिख धर्म विचारे गावहि ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सुवारे गावहि हिंदी उदासन बैठे देवत्या दरनाले गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन

नाले गावे मोहनिया मन मोहना सुरगा मच प्याले गावन रत्न उपाय तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोत महामल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे।

आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेसा एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चुलावै जिव हुवै फरमान हो वेखै उन्ना नदर न आवे बहुताय हो वडाण आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेसा

मेरा दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गलां समरा स्वामी सो क्यों मनो वसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा, कर तां तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा शिव सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाहीं घर तिरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम ही उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सा पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंचा शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूता तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। साची लिवे बिन देहन मानी, देहन मानी लिवे बाजों, क्या करे विचारिया तुद बाद समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया सुनो हुर था नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवे बाजों क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा, किल विख कटे ज्ञान जन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जे तू दे सोई जन पावे, पावे तां सो जन दे, जिसनूर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरे दह दे सिक नाम लाग सवारिया।

हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चलै सुवामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा। जन नाम लाए से हर हर सदा ते आवै, जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरु दुआरे सुख पावे। कहे नानक सचे साहिब ज्यो भावे तिवे चलावे, इहो सोहला शब्द सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। इहो तिन कै मन वसया जिन धुरों लिखे आया, एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया, पवे धोए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याए। आ पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सुभाइया, कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहजना उपजा विण सह जाय सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए। सह सह जियो मलीन है कित संयम धोता जाए, मन तो बहु शब्द लाग हो हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, हो सहसा आव जाए। जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। इहो तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कुमाणी, कूड की सोहे पहुंचे नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले से वनजारे। कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवे तां सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हिरदे त्याए, अंतरात्मा संभाले। आप छड़ सदा रहे परणै, गुर बिनि अवरना जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै बिन

लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सत गुरमुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे

बोलना जी वाहिगुरू। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हेत सीह दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सवासां संग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

0: भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीच चोंच कुट जाते
0: हर सिमरन तारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की

0: जिसको सिमरत परमगत पावे,
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: जिसे त्याए सदा मन अंदर,
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याए त्या मन जोग,
1: जय प्रसाद पाठ

0: प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके,
1: मन सरनी प्रभ ठाकर प्रभ ताके।
0: जय प्रसाद तुझ

0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस कर चले,
1: जय प्रसाद सुपूर्ण फले,
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर

0: नजर से
1: साध के संग बसे थान ऊचे
0: साधु के संग नजर से
1: साध के संग दिड़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नान साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उदार है
0: साध संग साधन मीट कटम ने सारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: जिस संग थे सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग सो बास और देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पेटत होतने हाल
1: साध के संग कलोखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां

0: सादगी टैल संत संग हेत
1: करण न सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हरे
0: मन की वासना मनते टरे
1: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
0: नानक तुम देखो ऐसा प्रस
1: जैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्णु की माया ते होए पिन
1: कर्म कर तो होवे ने कर्म
0: जिस वैष्णव का

0: कई कोड प्रभु को खोजनते
1: आत्म पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोड दर्शन प्रभु प्यास
1: तिनके मिले प्रभु अविनाश
0: कई कोड मांगे सत